0: तुम क्लास तुम काफी
1: सोतू सुख सानने रजगले मध्य मंत्री तुम मता का स्कारन पिछले तुम सब तुम तो चला रहे नाना का तीन नाना का काम रहे तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वह ये जन के जान मंत्री तुम मता का स्कार जान है ये जन के रिस्क सान पर ना जब फिक्री जन मु उतनी मां ने किसी से लेन देसाना को दे मनारा कनास सेमु जान ले फिट देसाना दे फा मनारा कंटेन दे ए देमरा ना तो फिट तो सोम तांग मिरी जाने सेन जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु फतारा कौन सा ele fia na cavina zane uma zutsa uma tsara le tina reo pieta tena mbola tsina ienao zane
3: e zut zane le otsine mitete Madagasikara zona la ko le zutunga taty e saina vatara ko zut izy sy mafitla tsana zut te zut zane zay le zut zut fia na cavina timiana karsare tonga taty te valasa sy izy amizao satria mbola lasa tsaka izy zany zaza mampaherena azy hoe andiamanitra ny mampitana azy raka izy ta e tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara dia sotony mihitsy zany efankaherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe makafy tokoa anty losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुमको वाफी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तो नहीं लें ता सच्चे माता उसे ले हुए ही फलों से तिवरी से ये तो लियारा दे आकू नहीं मुझे छिमन दे या जब मुझे मुसारे के जैसे सच्चे हमारे लोग तिवरी स्तुको जैसे नहीं सच्चे केरेट हम उन उलू मलाकी हम जोफ्तो नहीं कितो दिन दिन फस है पमारो चाकू हूँ नहीं कितो आकू अविलिमुरा छिले तक ले उलू मुझे के छिमी बोगे सच्चे अंसानो माता उसे ले विरी से Zezan mahatunga nai taraiko kumateluani virisitu tivahoga. Madagasikara ndio ninafa atu yanchimo ntuliara musare.